0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबंधन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् दशसहस्राधिकाः प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा।

एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: श्रोतागण, आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रको बिहानी प्रसारण सेवाबाट सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज, र अब क्रमैले सुनाउन लागिरहेका छौं सन् 1978 सालमा निर्मित चलचित्र घरबाट। एनएनसीपीद्वारा निर्मित अनि मनिक च्याटर्जीद्वारा निर्देशित यस चलचित्रका संगीतकार हुनुहुन्छ आरडी बर्मन अनि गीतकार गुलजार। विनोद मेहरा अनि रेखाको यस चलचित्रमा मुख्य किरदार रहेको छ। स्वीकार्नुहोस् यस चलचित्रबाट लिएको यो गीत कलाकार किशोर कुमार अनि लता मंगेशकरको युगल आवाजमा।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देशभर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरूआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर

0: से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता
2: संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही

0: खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
5: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ हैं, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ हैं, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
4: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
5: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
4: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's three-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hun has asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident, and implement corrective measures to prevent similar incidents in the future. The Vietnamese Prime Minister has also directed the authorities to take strict legal action against anyone found to have violated regulations that may have caused the accident. The Vietnamese Prime Minister has also directed the authorities to provide assistance to victims and their families. The tragic incident occurred yesterday when the speedboat carrying 36 people, including 4 crew members, flipped after reportedly being hit by a sudden wave off Rut Ngoi Island. While local authorities managed to rescue 21 people, 15 Indians, including 2 women, died. The Indian Embassy in Vietnam has released a list of the deceased provided by the Vietnamese authorities. Of the 15 deceased, 10 are from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh, and 2 from Kerala. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar have expressed condolence at the tragic boat accident. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A report.
6: U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Keshem Island, Bandar Abbas, and

महर्षिनि हर्षरति त्रिभुवन पोषिनि शंकर तोषिनि किल्बिषमोषिनि घोषरते दुनु जनि रोषिनि दिति सुत रोषिनि दुर्मदा सोमिनि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरते शिखर सि सोमिनि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैठ भबंजिनि कैठ भबंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते अयि शतखंड विखंडित रुंड वितीडित शुंड गजाधिपते दिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपापित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल का मेल बॉक्स आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। साथियों, इस कार्यक्रम में आप अपनी मेल और संदेश के जरिए पहुंचाते हैं हम तक अपनी पसंद और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिलहाल पहला गीत हमने जिसकी पसंद पर लिया है वो है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फारिया फरहीन और ताहिरा की पसंद का। आइए सुनते हैं फिल्म मिलन का ये गीत।

साहू का संदेश हम तक पहुंचा है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप का संदेश हम तक पहुंचा है। और ये जो संदेश है ये है बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कंचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत कारेगांव का। और किसी भी गीत पर अपना नाम शामिल करने के लिए लिख रहे हैं ग्राम बाघामुडा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। ये अगला संदेश है स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से लिखने वाली मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक। अगला संदेश शामिल करते हैं फरुखाबाद से साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया और शिवानी चौरसिया का ये संदेश है। इसके बाद हमें अनारकली बाजार जगराव से पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीप कमल होत्रा और गाविया अमल होत्रा, जयपाल यादव का भी संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश है भोपालगढ़ राजस्थान से लिखने वाले धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार लिखते हैं मैसेज जरूर शामिल करें। तो देखिए हमने आपका ये संदेश शामिल कर लिया है। अगला संदेश हम तक पहुंचा है बड़ा बम खंडवा चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू हैं। सुनना चाहते हैं फिल्म सूरज का गीत, हम जरूर सुनाएंगे। इस गीत के बाद अगला गीत आपका ही पसंद का होगा। और फिल्म धनवान का गीत सुनना चाहते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल, भानु प्रकाश। लेकिन हम शामिल कर रहे हैं अगला जो संदेश है ये लिखने वाले हैं प्रेम पूर्वक आदाब, आपको भी आदाब, कुमार हिड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइनिया हसन, नाजिया। और ये संदेश हम तक पहुंचा है जिला मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से लिखने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और नवीन भाटिया जी मोतीनगर दिल्ली से नमस्कार भेज रहे हैं। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप? जरूर अच्छे होंगे। अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म फकीरा से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं और ये जो पसंद है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना की। तो चलिए इन्हीं की पसंद में हम सभी अपनी पसंद को शामिल करते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा।
3: ध्यान रखना बेटा।
4: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
5: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
4: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
5: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
4: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स, और दिल के मेल बॉक्स में आप सबके जो संदेश हैं बड़े प्यारे प्यारे से रखे हुए हैं, मैं शामिल कर रही हूं। ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम का संदेश हम तक पहुंचा है। पद्मा टाकी नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी हमें संदेश भेजते हैं। मजनू कटिला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का भी संदेश हम तक पहुंचा है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानुप्रकाश, गीतिका खोरवाल भी हमें संदेश भेज रहे हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता भी हमें सुन रहे हैं, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये जो संदेश है किनका है, ये है वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी भावसार का पहुंचा है हम तक। कमलेश मुकुल, सचिन, दीपांशु फिल्म सूरज का गीत सुनना चाहते हैं, ये दिल्ली से हैं, तो हम जरूर सुनवाएंगे ये गीत, लेकिन अभी आप थोड़ा सा करें इंतजार। ये संदेश हम तक पहुंचा ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाले, अर्चना ताई गोंडाले, हीरामन शिंदे जी और प्रणय प्रसिद्धि। ये संदेश है नलेश्वर नगर नरविल महाराज से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर का। मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मोहेकर का। और अगला संदेश है सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग का, जो हमें सहारनपुर चंद्रनगर से भेजते हैं। फारूक अली का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और इनके अलावा कोल्हापुर महाराष्ट्र से तेजस्विनी चौहान, भाई इंदुरकर, बीबी शौर्या, सुरेश, अंकिता, अनिकेत चौहान। किवलेगांव पुणे से अंकिता कामले, सैदापुरकर, विजय कामले, सीतापुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस कामले। और अगले संदेश की ओर हम बढ़ते हैं। ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये किनका संदेश है, चलिए अभी हम पहले ये गीत सुनवा देते हैं, इसके बाद हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। ये गीत है सूरज फिल्म से, इसकी फरमाइश है बड़ा बम खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे और परिवार के सदस्य, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कमलेश मुकुल, सचिन और दीपांशु।

और अब मैं आपके अगले संदेशों की ओर बढ़ती हूं। बबलू कश्यप, सिराज मिथुन, अशरफ अली, नवाब अहमद, सलीम अख्तर का ये संदेश हम तक पहुंचा है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अबान और समस्त अब्बासी परिवार ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये हमें संदेश भेजते हैं। अगला संदेश है सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर का, डाबकी चौक अकोला से। और ये संदेश हमें भेज रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, इल्जा नायब और लड्डू, रघुवीर नगर दिल्ली से। अगला संदेश हमें भेज रहे हैं ये फिर से, आप दो दो बार संदेश भेजते हैं तो जिसमें कहीं मुश्किल होती है हमें पढ़ने में। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश है शेरवानी स्कूल गंजरुन द्वारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का। और ये संदेश हमें भेजा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंद भूषण, संस्कृति पौरुष का, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। अगले संदेश के लिए हम बढ़ते हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना का, और साथ में है तुलसी मस्किन, शाहदरा से हमें ये संदेश पहुंचा है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य ये संदेश भेजते हैं। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन का भी संदेश हम तक पहुंचाया। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। और ये है विजय सुरलकर, रतन माला सुलटकर, कुमकुम गुड़िया, मोताला महाराज से हमें ये संदेश भेजते हैं। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉ प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, वायाल कुमार, प्रथमेश कुमारी, प्रणाली देशमुख, कुमारी सर्व देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख का। अब हम अगला गीत आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है आया सावन झूम के फिल्म का। ये फरमाइश आप सबकी है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान की पसंद का ये।

अब जल्दी से हम आपके संदेशों को शामिल कर लेते हैं, नहीं तो आपको शिकायत रहेगी। तो ये संदेश हम तक पहुंचा है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का। किसी भी गीत में ये नाम शामिल करने के लिए कह रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से ये संदेश आया है और ये संदेश है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो का, जनकपुरी सहारनपुर से। ये संदेश है राम राम कुसुम जी, लिख रहे हैं उग्रसेन यादव और शकुंतला यादव, गरिमा नई दिल्ली से। अगला संदेश हम शामिल करते हैं संदीप मकर का। ज्योति मकर हैं साथ में, मन्नत मकर, भारत मकर और साथ में परिवार के सदस्य हैं। ये भी सूरज फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो वो हम सुनवा चुके हैं। और शेगांव बुढ़लाडा महाराष्ट्र से ये संदेश आया है संतोष काले, तेजस काले, लोकेश काले का। और हमारे पास ये भी एक संदेश है अनिल मोहन, उषा मोहन, रिलू नायक, मधु नायक का, पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया का भी संदेश हम तक पहुंचा। गाजियाबाद से ब्रजेश कुमार, अजय कुमार, विजय कुमार, मोनू सोनू सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही दिल का मेल बॉक्स यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस चैनल पर कुछ ही पलों में आपके लिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को भी संबोधित किया और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान में भी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले खराब, सड़े गले, दूषित और अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू कोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड 3री बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले चार दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his six-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi had visited Indonesia from the 6th to the 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, Prime Minister Modi travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both the countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The visit to New Zealand was the first visit by an Indian Prime Minister in 40 years. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: Bharat aur New Zealand ke rishte mein yaadein bhi hain, dosti bhi hain, values bhi hain aur ek commitment bhi hai. भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate and lay the foundation stone of various people-centric projects of Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Ahmedabad today. During the program, the minister will also kick-start an ambitious mass afforestation campaign for his Gandhinagar Lok Sabha constituency. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to food business operator Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate legal action will be initiated. Consumer complaints alleged the supply of expired, spoiled, rotten, contaminated and otherwise unsafe food products through Swiggy Instamart. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Kesham Island, Mandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed the Strait of Hormuz until further notice. Iran's IRGC Navy said the sea route was closed following an incident involving a vessel that attempted to use an unauthorized route. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for the next 4 days. These places include Jammu and Kashmir and Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Odisha. In the FIFA World Cup, Argentina and England have advanced to the semifinals. Earlier, England beat Norway 2-1 in a quarterfinal match at Miami Stadium, Florida. Defending champions Argentina beat Switzerland 3-1 in the last quarterfinal match in Kansas City, Missouri this morning. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. And that is the end of this news bulletin.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन सकते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आज की मेहमान में आज हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक ऐसी शख्सियत जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, साहित्यकार है, वो है जयंती रंगनाथन, जो लंबे समय से पत्रकारिता करती रही हैं और साथ ही साथ लिखती रही हैं कहानियां, उपन्यास, कविताएं। ये सारी जो उनकी रचनाएं हैं उनके पाठकों में बहुत लोकप्रिय रही और वो हम कहें अगर कि वो अनुभव का तो एक खजाना है उनके पास तो गलत नहीं होगा। तो आज की जो ये मुलाकात है बहुत मजेदार रहेगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे जयंती रंगनाथन से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत जयंती जी गोल्ड के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, क्या कहूँ, सब सुनने वालों को ढेर सारा प्यार।
0: वाह जयंती जी, मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊंगी यादों के गलियारों में और मुंबई शहर में जहां से आपने करियर की शुरुआत की, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: बिल्कुल, पर मुंबई से पहले मैं आपको भिलाई ले जाना चाहूंगी।
0: हाँ,
1: ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत खूबसूरत सा शहर है जहां मेरी पैदाइश हुई, जहां मैं पली बढ़ी। भिलाई स्टील प्लांट में मेरे अप्पा काम करते थे। मैं अप्पा कह रही हूँ तो सब सुनने वालों को पता लग ही गया होगा कि मैं दक्षिण भारती हूँ, अप्पा और अम्मा कहते हैं। बचपन बड़ा खुशहाल सा था, बड़े मजे मजे में हम लोगों की जिंदगी बीती। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो घर में खुशियां तो थी लेकिन पैसे थोड़े कम थे, तो हमारी माँ ने एक तोड़ निकाला था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मुंबई और अब दिल्ली के तार वहीं से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो तार ये जुड़ा हुआ है कि बचपन में जब सब घूमने जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, हम जा नहीं पाते थे चारों भाई बहन, तो हमारी अम्मा कहती थी कि इसको इस तरह से मनाओ घर में रहते हुए कि तुम्हें लगे कि ये तुम लोगों की सबसे मजेदार छुट्टियां हैं। तो वो क्या करती थी, हम सबको कहती थी कि तुम लोग कुछ कलर पेंसिल ले आओ, कागज ले आओ, जिसको जो मन है करो। मुझे याद है मैं छठवीं में थी और उस साल हमारी अम्मा ने हम लोगों को कुछ सफेद कागज लाके दिया और कहा कि चलो तुम लोग बैठ के इस पे लिखो, जो मन की बातें हैं लिखो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे घर में पढ़ने का मतलब एक तरह से कहूं कि भयंकर सा रिवाज है। घर में और कोई काम हो न हो लेकिन पढ़ने में तो इतने उस्ताद रहे हैं हमारे अम्मा अप्पा और घर के हर सदस्य कि हम सबको ये एक बीमारी की तरह आदत लग गई है। बिल्कुल।
0: हाँ, और किताबें तो अपनी यात्रा खुद ही करवाती हैं।
1: बिल्कुल, और घर में हिंदी की, अंग्रेजी की, तमिल की, मलयालम की, हर भाषा की पत्रिका, उपन्यास, सब कुछ अम्मा अप्पा मंगवाते थे तो हम लोग सब पढ़ते थे। कहीं कोई हम लोगों को रोक टोक ही नहीं था पढ़ने में, बच्चों की सारी पत्रिकाएं आती थी उस वक्त। और प्लस गर्मी की छुट्टियों में जो लाइब्रेरीज होती थी किताबों की, वहां की सदस्यता लेके दे दी जाती थी कि आप लोग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, भाषा इम्प्रूव करिए, फिर खूब चर्चा करिए आपस में। तो हम सब जो है बहुत कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। और अभी जैसे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो है एक दौलत थी हमारे पास।
0: मुझे तो यही लग रहा है आपके पास तो बहुत बड़ा धन था।
1: जी, और इतना पढ़ते थे। तो उस गर्मी की छुट्टी में जब माँ ने कहा कि कुछ लिखो तो मैंने एक कहानी लिख दी। मेरी पहली कहानी थी 6 महीने की चाबी, वो हमारे अप्पा ने किस्सा सुनाया था। तो अप्पा जो है व्हीलचेयर में रहते थे उन दिनों, तो किस्सा सुन के उन्होंने कहा बेटा लिखो तुम ये जयंती। मैं तीसरी घर की उनकी बेटी थी तो मैंने लिख के जब सुनाया शाम को तो अप्पा को बहुत अच्छा लगा, तो उनकी शाबाशी मिली। मैंने कहा चलो और लिखते हैं कहानी। तो इस तरह से मैं कहूंगी 10-11 साल की उम्र से मैंने कहानी लिखना शुरू किया। और अगले साल गर्मी की छुट्टियों में मैंने एक कहानी लिखी धांसू के आंसू। तो एक कॉमेडी कहानी थी, कुछ मजेदार किरदार जो है,
0: शीर्षक सही लग रहा है।
1: तो उसके बाद अप्पा ने कहा ये कहानी बहुत मजेदार है, इसे तुम बिल्कुल रफ करके लोटपोट में भेजो। और मैं आपको क्या कहूँ, वो कहानी लोटपोट में छप गई और 40 रुपए का मनी ऑर्डर आ गया।
0: वाह,
1: उससे पहले तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और मैं आपको बता रही हूँ साल 78 या 79 की बात है। बिल्कुल,
0: 10-11 साल की,
1: बिल्कुल उतनी उम्र थी मेरी। और वो ऐसा था कि मेरे हाथ में जैसे एक तुरप का पत्ता लग गया, कोई खजाना लग गया कि लिखो और इससे पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि पैसे की सच में कमी थी घर में, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही था, तो वो एक जरिया बन गया। लेकिन मन के किसी कोने में ये बात नहीं आई थी रश्मि जी कि लिख

0: ना आपका करियर बन सकता है, आपका पेशा बन सकता है। पता ही नहीं था उस छोटे
1: मतलब
0: शहर
1: शौक
0: में
1: था बस एक।
0: तो मैं तो भाई कॉमर्स की छात्रा थी और ये था कि भाई कॉमर्स पढ़ के आप बैंक में नौकरी करेंगे और आपकी एक स्थायी नौकरी होगी, लिखेंगे शौकिया। तो जब मैंने बीकॉम कर लिया तो हमारी मां ने तय किया, तब तक अप्पा का निधन हो चुका था, कि हम सब मुंबई जाएंगे क्योंकि मुंबई में दीदी की नौकरी लग गई थी।
1: अच्छा।
0: तो हम मुंबई गए और मैंने एमकॉम करना शुरू किया और उसके बाद बैंक में नौकरी मिल गई।
1: ये तो मतलब आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी रही होंगी उस समय, बैंक के लिए भी बहुत एक
0: रश्मि जी कॉम्पिटिशन से ज्यादा। मैं कहूंगी कि हम लोगों को पता था कि निशाना कहाँ मारना है। वो हमारी माँ जो है, हम तीन बहनें और एक भाई, भाई छोटा, इस तरह तैयार किया था कि बचपन से वो हमें ये कहती थी कि तुम्हें जिंदगी में जो भी सपने पूरे करने हैं कोई ऊपर से राजकुमार उतर के पूरा नहीं करेगा,
1: अपने आप करने
0: अपने आप करना है आपको। आपको जो भी मन है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको जो भी संसार चाहिए वो आपको खुद जुटाना होगा और आपकी कमाई ही आपकी दौलत है। तो उन्होंने उस तरह से हमें ट्रेन किया, तो वो बात दिमाग में इतनी ज्यादा घर कर गई। तो हम तीनों के सामने यही था कि जल्द से जल्द नौकरी करनी है, घर को सपोर्ट करना और अपने लिए एक जिंदगी बनानी है।
1: देखिए माँ जब इस प्रकार से शिक्षा के हथियार आपके हाथों में दे देती है ना, तो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं लेकिन इस प्रकार के जब आपकी शिक्षा हो तो फिर तो क्या मतलब, मुझे नहीं लगता किसी और भी मदद की भी जरूरत है।
0: बिल्कुल आप बहुत सही कह रही है। इसलिए जब भी मैं लड़कियों से मिलती हूँ, जब भी मैं इस तरह के किसी शिविर में जाती हूँ या लड़कियों को संबोधित करती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आज की तारीख में पढ़ना और आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर लड़कियां जो है वो बहुत सुंदर संसार बनाती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और पति के लिए। और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो आज से 30-40 साल पहले अम्मा ने कहा, हमारी अम्मा बड़ा अंग्रेजी में डायलॉग मारती थी कि मैरिज इज नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द लाइफ। वो कहती थी राह चलते कोई मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जिये, कॉम्प्रोमाइज करके समझौता करके मत जिये। फिर वो भी कहती थी कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है तो उसमें फिर रहे मत, आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। तो इस तरह की शिक्षा को लेके हम बहनें बड़ी हुई बिल्कुल। और वाकई में अम्मा की शुक्रगुजार हूं कि जब बैंक की नौकरी मिलने के बाद मैंने एक बार एक अखबार में एड देखा और वहां ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया को पत्रकार चाहिए, तो मैंने कहा अम्मा मैं इसमें जाना चाहती हूँ क्योंकि ये लोग जो जो मांग रहे हैं वो मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि लिखने का अनुभव होना चाहिए, देखिए इतनी मेरी कहानियां और इतने लेख छपे। मैं लिखा करती थी कॉलेज के दिनों में और उसमें बहुत कहानियां छपी थी, पराग वराग सब में छपती थी। तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। अम्मा ने कहा ठीक है जो मर्जी है कर ले। मैंने जो है वो फॉर्म भर दिया और मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। रश्मि जी मैं सिर्फ 20 साल की थी जब मैंने धर्मयुग ज्वाइन किया, और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे हाथ में क्या कारू का खजाना लग गया है।
1: जी धर्मयुग ऐसी पत्रिका जो हम याद करते हैं, वो सुनहरा समय, वो साहित्य का मैं कहूँ जमावड़ा जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जो कुछ बेहतर होना चाहिए वो सब कुछ था धर्मयुग में। इतनी सुंदर सुंदर कहानियां, मैंने बचपन में बहुत धर्मयुग पढ़ा है।
0: कहानियों के अलावा जिस किस्म के लेख, साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका आप कह रही है और मैंने जिया है,
1: मुझे लगता है एक जो साहित्य की जो संस्थान होता है ना अपने आप में वो था धर्मयुग।
0: बिल्कुल,
1: और आप बड़ी किस्मत वाली थी, वहीं से शुरुआत।
0: मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच में बहुत किस्मत वाली थी कि मुझे धर्मवीर भारती जी के साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल वो मेरे संपादक, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। तो फाइनल इंटरव्यू में जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो तुम नाम के आगे जयंती रंगनाथन लगाती हो तो सिर्फ ये ऐसी है कि तुम्हें तमिल वमिल बोलना आता भी है? तो मैंने कहा कि सर ना नन्नावे पेशवे तमिल कलुंगो निकल एन ककड़वा कलुंगो। वो इतने जोर के ठठा के हंसे, बोले वाह लड़की तुम तो बोल लेती हो।
1: मैंने कहा इसका अर्थ क्या था जो अभी आपने बोला? ये भी
0: मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से तमिल बोल लेती हूँ, आपको जो पूछना है पूछिए।
1: वाह क्या बात है, मुझे लगता है कि भारती जी समझ गए होंगे कि क्या कहा है।
0: अच्छा मैं वही कह रही हूँ, उस उम्र के उस पड़ाव में थी जब आपको पता नहीं था कि कितने बड़े लोग हैं क्या है। वो तो आप एक मासूमियत के साथ या एक उसके साथ आपको कह देते हैं। तो वो खूब हंसे और बाद में बोले इसने तो मेरे को तमिल में जवाब दे दिया।
1: वाह।
0: तो मैंने उस तरह से अपने करियर की शुरुआत की और सच कहूं तो एक तरह से हिंदी ने मुझको अपनाया या मैंने हिंदी को अपनाया वो धर्मयुग में जाने के बाद ही हुआ। उससे पहले लिख लेती थी लेकिन जो संस्कार पड़े, जो प्रशिक्षण मिला वो, और मेरा शुद्धिकरण हुआ एक तरह से मैं कहूंगी, भाषा को लेके, समझ को लेके, साहित्य को लेके, वो सब वही धर्मयुग से बड़ा कोई स्कूल हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
0: वहां रोज मतलब आप देखें पद्मा सचदेव जी आती थी, चित्रा जी आती थी और चुपके से मुझसे कहती थी एक लड्डू दे रही हूँ तुझे, दो दे रही हूँ।

0: चुपके से खा ले। मैं छोटी सी थी तो कंधे पे हाथ फेरते हुए, हर बड़ा साहित्यकार वहां आता था, कई बार फिल्म सितारे भी आ जाते थे जिनका इंटरव्यू हम करते थे, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते थे। रश्मि जी वो कितने बड़े कद के थे, वहां जाके समझ में आया।
1: बातें हो रही हैं धर्मयुग की और बातें हो रही हैं मुंबई की और फिल्मी सितारों की भी आपने बात की, और हमारा जो चैनल है वोल्ट इसमें तो हम लगातार गाने भी सुनते हैं, तो इस मौके पे आप बताएं कौन सा एक मीठा सा गीत हमारे सुनने वालों के लिए सुनवाना चाहती हैं।
0: एक गाना मेरे दिमाग में हमेशा हॉन्ट करता है, आवारा ए मेरे दिल जाने कहां है तेरी मंजिल।

0: बहुत मीठा ये गीत आपने चुना और हम वापस आते हैं उसी मुकाम पर जहां हमने बातचीत छोड़ी थी कि आप बहुत सारे साहित्यकारों से मिलती थी और एक बहुत अच्छा सा माहौल था वहां पर, तो उस समय कुछ रोचक घटना।
1: देखिए, पत्रकारिता कहूं या लेखन कहूं, उन सबका मेरा बहुत पहला अनुभव था। जब मैंने ज्वाइन किया और मैं कई बार असाइनमेंट के लिए बाहर जाती थी और मैं बहुत दूर रहती थी पनवेल में, मेरा अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता था
0: ट्रेन
1: तो
0: से।
1: ट्रेन नहीं थी डायरेक्ट वहां उन दिनों पनवेल से, तो मैं ट्रक मिला तो ट्रक, बस मिले तो बस, कोई भी गाड़ी मिले मानखुर स्टेशन और फिर वहां से भागती हुई ट्रेन पकड़ के ऑफिस जा रही हूँ और वहां अटेंड कर रही
0: हूँ। का ऑफिस किधर?
1: बीटी स्टेशन के बिल्कुल सामने था ना, तो ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर कहते हैं उसे, बहुत आलीशान और बहुत शानदार ऑफिस, जैसे वहां जाओ तो बड़ी गर्व की अनुभूति होती थी कि आप धर्मयुग में काम करने जा रहे हो। तो एक बहुत मजेदार मैं वाकया आपको सुनाना चाहूंगी। इस वाकये का जो संबंध है, आज जितनी भी लड़कियां काम करने आ रही हैं वो भी एक तरह से इससे लेसन ले सकती हैं। तो क्या होता था, हम लोगों का टाइम जो था वो 9:30 से 5 बजे तक का था और मैं दूर रहती थी तो मुझे भाग के जाना पड़ता था बिल्कुल, ताकि घर में

0: इच अप लगातार होने लगा तो मैं जो है थोड़ी घबरा गई। मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी भाई, और फिर उसके बाद मैं अगर 8 बजे निकल रही हूँ तो इसका मतलब है 11 बजे घर पहुंच रही हूँ। मुझसे समझ नहीं रहा था, छोटी थी, और सच कहूँ तो पहली नौकरी थी, आदत नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। तो ये जब बहुत दिन तक ये चला और मैं मैनेज नहीं कर पाई तो मैं भारती जी के कमरे में चली गई। अच्छा। तो मैंने कहा भारती जी आप मुझे ना यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए कहीं और। तो बोले अरे क्या हो गया, तुम तो अच्छा काम कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर नहीं पाऊंगी। कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे लगता है पहली बार और आखिरी बार मैं नौकरी में रोई होंगी, और इतने बड़े जो है बैठे हुए साहित्यकार मेरे बॉस उनके सामने रोते हुए मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, और सुदीप जी जो है वो 4 बजे से मैं बैठी रहती हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ बताइए। वो खूब हंसे, फिर हंसे, और फिर उसके बाद हमारी एक और सीनियर थी वहाँ सुदर्शना जी, उनको बुला के कहा कि देखिए सुदीप जो है बिल्कुल
1: सुदर्शना द्विवेदी
0: बिल्कुल, तो उनको बुला के कहा कि देखिए सुदीप जी बिल्कुल लौंडो लपाड़ों की तरह ले रहा है बच्ची से काम, बस आप जो है अब इसको अपने इसमें ले लीजिए, आप इसके साथ रहिए ठीक है। फिर बोले तुमको कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, ये तो मजाक कर रहा है, ये तो सिखाने का उसकी अदा है। तो सुदीप की बाद में जो है सुदीप जी निकले, बोले अरे भारती जी से डांट खिलवा दिया पर आप तो ऐसे ही करते हैं ना मेरे, चलो कॉफी पिलाता हूँ। तो मैं फिर कॉफी पिलाते, बोले अरे लड़की झल्ली कहते थे तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ भाई पत्रकार है, पत्रकारों के लिए समय थोड़ी होता है, तुम ऐसे भागती रहोगी तो कैसे सीखोगी पत्रकारिता, हम लोग ऐसे नहीं मतलब डेस्क पे पत्रकारिता नहीं होती, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के काम करना चाहिए, और जितना मैं कहता हूँ तुमसे उतना करोगी तो कल तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। पत्थर की लकीर की तरह मैंने उनकी बात मान ली। उसके बाद मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, एकदम उन्होंने बहुत गुरु की तरह सब कुछ सिखाया। मैं ये मानती हूँ कि ये एक शुरू में ही आपको एक छोटा सा
1: रास्ता है,
0: तराशना चाहिए, छोटा सा चपत लगनी चाहिए आपको कि काम ऐसे होता है। पत्रकारिता जो है 9 से 5 की नौकरी नहीं होती, तो हर लड़की जो आज इस फील्ड में आती है तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि पत्रकारिता 9 से 5 की नौकरी नहीं होती। कोई भी क्रिएटिव काम आप समय के इसमें बंद के आप नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते।
0: आपको जो है अपने आप को फैलाना होगा, बाहर जाना होगा, मिलना होगा। जब तक आप दुनिया नहीं जानेंगे आप दुनिया को सच्चाई कैसे बताएंगे
1: जी, लिखोगे कैसे, कागज पर कैसे उतारोगे,
0: बिल्कुल चाहे कहानी हो या आपका जर्नलिस्टिक कोई भी रिपोर्ट हो आपको मैदान में उतरना होगा,
1: उतरना पड़ेगा।
0: तो वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक रहा
1: जी,
0: और शुरू में ही मिल गया मुझे।
1: वाह, तो वो जो मूर्ति जो गढ़ी गई वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी मजबूत निखर कर आई। और अब तो आप दिल्ली में हैं, फिर मुंबई से दिल्ली आना हुआ?
0: जी जी, तो फिर मुंबई में मैं धर्मयुग में 10 साल रही, 1 साल ट्रेनिंग के और 9 साल वहां रही। फिर उन दिनों जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल बड़ा बूम कर रहा था तो मुझे भी लगा कि थोड़ा हाथ माजमाना चाहिए, उम्र का तकाजा भी था। तो मैंने सोनी टेलीविजन ज्वाइन कर लिया था 3 साल के लिए बिल्कुल शुरुआती दिनों में, और काफी सीरियल्स लिखे वहां पे मैंने। अच्छा। मैं आइडिएशन डिपार्टमेंट में थी तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था।

0: हमारे श्रोता आज एक ऐसी शख्सियत के अनुभव सुन रहे हैं जिन्होंने, हम कहेंगे ना कि रचनात्मकता के हर पहलू पर काम किया हुआ है। ये बहुत बड़ा खजाना है, मतलब जो निखर कर आता है ना, वो एक एसेंस निखर कर आता है, और वो आपकी कहानियों में, उपन्यास में जो आप लिखती हैं उसमें वो पता चलता है। जयंती जी, हम जब पढ़ते हैं तो ना लगता है कि अगला पेज क्या होगा, अगला पेज क्या होगा, वो मैं तो महसूस करती रही हूँ।
1: नहीं नहीं, ये तो अनुभव जो थे वो तो सच में मेरे लिए बहुत, क्या कहूँ, एक तरह से विटामिन का ही काम किया। तो ये जो किस्सा सुना रही हूँ सोनी टेलीविजन का, तो मैं वहां गई और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो है एक रोमांटिक सीरियल लिखना है। 27 मिनट का सीरियल होता था, उसे मशी मशी जो भी आप बोलिए, रोम कॉम कॉम तो नहीं था, बट बिल्कुल वैसा सीरियल था, रोमांस की कहानी। तो कहानी वहानी पे हमने जो है डिस्कस कर लिया। फिर मुझे जो है शुक्रवार के दिन ऐसी सुबह एक मीटिंग में मुझे वो पूरा उनको सुनाना था। तो वहां एग्जीक्यूटिव एडिटर, डायरेक्टर और बाकी दो तीन लोग आ गए और मुझसे कहा गया कि आप नरेशन दीजिए। और मैं आपको बताऊं तो तीन चार दिन लग के मैंने लालित्य पांडित्य सब कुछ उढ़ेल के मैंने वो एपिसोड लिखा था। कुछ ऐसा लिखा था कि भारती जी सुने तो शाबाशी दे और कहें कि जयंती तुमने क्या लिखा है।
0: वाह,
1: पूरा पांडित्य लाल, मतलब जो कुछ पता था भाषा का पूरा। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ू और निर्देशक जो है वो हंसने लगे, मैं उनका चेहरा देखूं, पर उन्होंने मुझे चुप रहने को नहीं कहा। मैं फिर पढ़ रही हूं, फिर वो हंस रहे हैं। मुझे लगा मैं कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, बहुत तेज तो नहीं बोल रही, बहुत गलत तो नहीं बोल रही। फिर आराम आराम से पढ़ना शुरू किया, वो फिर हंस रहे हैं। वो पूरा आधा घंटा ऐसा ही गुजरा कि मैं पढ़ू और वो हंसे, मैं पढ़ू और वो हंसे। मैंने जब खत्म किया और उनका चेहरा देखा, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ, वो हंस क्यों रहे। मैं कोई कॉमेडी सीरियल तो लिखा नहीं है मैंने, ये तो शुद्ध रोमांटिक है, लड़का लड़की छोटे से कोई शहर में है, कॉलेज के स्टूडेंट है, मिलते हैं। और फिर मैं उनका चेहरा जब देखने लगी तो उन्होंने कहा, जयंती तुमने संस्कृत में क्यों लिख दिया। और खूब हंसे। मैं फिर यूं देख रही हूँ उनकी और हक्का बक्का होके बोले, अरे जैसे बोलती हो वैसे लिखो ना, ये जिस भाषा में तुमने लिखा है उस भाषा में कौन समझ पाएगा, ये हम लोगों की बोलचाल की भाषा थोड़ी है। और तुमने जो हमारे लिए बाकी जो लिख के दिया था वो तो बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल बनेगी अपनी बात का एक एपिसोड, और अब ये जो लिखा है वो तो तुमने ऐसी भाषा में लिखा है जो कोई समझ ही नहीं पाए। उस दिन मुझे जिंदगी का दूसरा एक लेसन मिला कि भाषा वो होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, जो संप्रेषणीय हो।
0: जी,
1: अगर आपकी भाषा ऐसी है जो दूसरों की समझ ही ना आए, आपके पाठकों की या देखने वालों की या सुनने वालों की, उस भाषा का कोई मतलब नहीं है।
0: खासकर वो जब वो पर्दे पर बोल रहे हैं तो आपकी भाषा वास्तविक भाषा होनी चाहिए, असल भाषा होनी चाहिए।
1: तो मैंने रश्मि जी यहाँ ये किया कि लिखने की भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ आए। देखिए, अब पत्रकारिता शुरू किए हुए भी मुझे कुछ साल हो गए थे, दुनिया तेजी से बदल रही थी और पलट के जब देख रही थी तो हर कोई शिकायत कर रहा था कि हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं, हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं। अब भाषा को अगर हम बहती नदी नहीं बनाएंगे, लोगों से जोड़ेंगे नहीं, तो नई पीढ़ी कैसे जुड़ेगी बताइए। तो उस दिन मुझे ये दूसरा सबक मिला कि मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, किसी भी उम्र के लोगों को समझ में आना चाहिए, चाहे मैं लेख लिखूं, कहानी लिखूं, उपन्यास लिखूं, लेकिन भाषा मेरी ऐसी हो जो हर किसी की समझ में आए। तो वो मैंने दूसरा लेसन लिया। उसके बाद मुंबई से मैं दिल्ली आई, वनिता पत्रिका की शुरुआत हो रही थी, बतौर संपादक उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने सोचा प्रिंट मीडिया जो है वापस आती हूं। और किसी भी पत्रकार के लिए ना अपनी पत्रिका चलाने का अलग ही एक शौक होता
0: जी,
1: है
0: जब आप करता धरता बन
1: जी,
0: कर
1: जी, जी, जी,
0: और वनिता और जो मैगजीन वो तो महिलाओं की बहुत प्रिय
1: मैगजीन जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसको और जिसमें की कहानियां कविताएं, मतलब हर वो चीज, हर वो पहलू जो कि महिलाओं के लिए जरूरी होता है, तो वो मैगजीन तो हम समझ सकते हैं कि जब आप वो इतना अनुभव लेकर आई उसने तो हिट होना ही था।
1: वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। उस वनिता की वजह से मैं दिल्ली भी आ गई और दिल्ली ने मुझे अपना लिया, मैंने दिल्ली को अपना लिया। तो इस तरह से
0: जयंती जी, यहाँ पे एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप उस समय टेलीविजन के लिए सीरियल्स के लिए लिख रही थी, तो मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है या जितने भी ये सीरियल्स बनते हैं, धारावाहिक बनते हैं, ये जो भाषा जो होती है आजकल, बहुत ये बात चल रही है कि रोमन में लिखी जाती है, पढ़ते वही हैं, और आजकल जो बच्चे होते हैं वो भी हम देखते हैं जब टेक्स्टिंग करते हैं, जो संदेश भेजते हैं, तो वो हिंदी भी रोमन में लिख रहे होते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, वो कितना सही है, कितना हमें ग्राह्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
1: देखिये रश्मि, ये बात जो है ये शोचनीय तो है, लेकिन इसे आप अब बदल नहीं पाएंगे। मैं इसका कारण आपको बताती हूँ। हिंदी के जितने साहित्यकार हैं या पत्रकार हैं या इवन संपादक रहे या हिंदी के मूर्धन्य लोग, उन सब ने जो है हिंदी को आगे नहीं बढ़ाया इस तरह से कि अपने जो बच्चे थे उन्होंने उन सब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाला। सारे जितने हिंदी पट्टी के लोग हैं उन लोगों को भी यही लगा कि अंग्रेजी जो है वो सफलता का पासपोर्ट है, हिंदी नहीं। हिंदी में आगे पढ़ के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, करीब पूरा 5 दशक तक हमने अपने बच्चों को हिंदी से दूर कर दिया। वो बच्चे जो है हिंदी में फेल होते हैं, बाकी सभी जो है उनके
0: बहुत बढ़िया करते हैं जी।
1: वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते अच्छा कोई बात नहीं हिंदी तो है। हमने हिंदी को इस तरह से पूरे पाठ्यक्रम में हाशिए में डाल दिया। गलती तो हमारी है ना। अब आप अपने बच्चों को जो भी पीढ़ी आ गई है दूसरी तीसरी, उनको आप दोष नहीं दे सकते। वो सबने वही कहा जो उनके माता पिता ने उनके लिए सही समझा। तो आपने जब देवनागरी से उनको दूर कर दिया, हाँ आपने उनको हिंदी पढ़ने के लिए दिया ही नहीं। मैं जब नंदन की संपादक थी तब हम स्कूल्स में जाते थे कि आप नंदन सब्सक्राइब कर ले। माता पिता कहते थे हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो घर में बोल ही लेते हैं। अच्छा। बोलने भर को हिंदी चाहिए, उन्हें अंग्रेजी सिखाइए, अंग्रेजी में उनको मतलब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आना चाहिए उन्हें। आप अगर ये सब लेके चलेंगे और आज हम यहाँ बैठ के ये कहेंगे कि क्या कहे हमारे बच्चे तो इंग्लिश में टाइप करते हैं, उनकी गलती नहीं है,
0: तो
1: सब हमने तैयार किया हुआ है, आपने दूर किया है। प्लस बीच में ये दौर आ गया था कि आपने हिंदी को इतना क्लिष्ट बना दिया कि नई जो भी हिंदी पढ़ना चाहे वो बहुत दूर होते चले गए। क्लिष्ट हिंदी ही सही हिंदी है या नहीं, इस पे भी मैं बहस नहीं करूंगी क्योंकि हर तरह की हिंदी के पाठक हैं। हिंदी अपने आप में इतनी खूबसूरत भाषा है भाई कि उसको आप कैसे भी लिखे वो पठनी ही होगी, लेकिन अगर आपको नए लोगों को जोड़ना है तो आपको उनको देना होगा कुछ, आपने वो किया ही नहीं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिर अब आपके इस प्रश्न पे आती हूँ कि पूरे मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सितारे या जितने भी लोग काम करते हैं उन्होंने हिंदी में कभी कोई पढ़ा ही नहीं है, उनको सिर्फ बोलचाल की हिंदी आती है, इसीलिए वो हर काम अपना अंग्रेजी में करते हैं। तो मीटिंग्स भी जो वहां होती है तो अंग्रेजी में होती है मीटिंग्स, क्योंकि सारे
2: यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम दिल्लीबाट एफएम गोल्ड यो आकाशवाणी गान्तोक हो। यस प्रसारणलाई तपाईहरूले 103 मेगाहर्ज अनि एफएम कञ्चनजंघा साथै न्यूज अन एआईआर मार्फत पनि हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। समय यस बेला बिहानको 11:40 भइसकेको छ र हामी उपस्थित भएका छौं नारीहरूमाथि समर्पित कार्यक्रम नारी संसार लिएर। श्रोता, यो नीलो विशाल आकाशलाई हेर्दा हामीलाई लाग्छ यसको न त कुनै सिमाना छ न त यसको गहिराई नै नाप्न सकिन्छ। आकाशले आफूभित्र कति आधी बेहरी कति घाम पानी र कति कालो बादललाई लुकाएर पनि संसारलाई सधैँ छारिदिइरहन्छ। यस्तै हुन्छ एउटी नारीको जीवन र उनको मन पनि। नारीको हृदय पनि यो आकाश जत्तिकै विशाल र सीमित छ। उनले आफ्नो मनभित्रका दुःख कतिपय आदिहरूलाई शान्त पुर्याउँछिन्, आँसुका बादललाई भित्रै गुम्स्याउँछिन्, तर संसारको अगाडि सधैँ एउटा नारी अटल आकाश जस्तै उभिएर आफ्नो परिवार र समाजलाई स्नेहको छारी दिइरहन्छन्। यस्तै भाव बोकेको गीत विमला प्रधानको स्वरमा

0: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुन्नुभयो नेपाली लोकगीत कार्यक्रम। अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट विविध भारती कार्यक्रम प्रतीक्षा साँच्नुहोला।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आरंभ होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन। नमस्कार स्वीकारें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सुरीला सफर। और आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि सुरीला सफर में हम भेजते हैं आप तक एक इबारत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहां से आपके साथ होती हैं बहुत सारी बातें। तो जो इबारत हमने भेजी है उसे हम आपके सामने पढ़ देते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि एक जीवन में किसी का साथ मिल जाए तो वही हमें 2 से 11 बना देता है। कभी कोई तीसरा उस साथ को पूर्णता देता है तो कभी वही उसे विच्छिन्न भी कर देता है। 4 लोग कभी प्रशंसा की थपकी देते हैं तो कभी अपने वचनों से हमें परखते भी हैं। 5 इंद्रियां कभी जीवन पथ की सहचरी बनती हैं तो कभी कभी साथ छोड़ती प्रतीत होती हैं। और 6 इंद्रिय वो भी अपने संकेत देती रहती है। 7 समुद्रों से सुसज्जित यह वसुंधरा फिर भी अपनी ही लगती है क्योंकि इसमें हमारी स्मृतियां और अनुभूतियां बसी होती हैं। 8, 9, 10 न जाने कितने अंक और कितने संबंध जीवन की गणना में जुड़ते जाते हैं। कभी 100 पीड़ाएं भी धैर्य से सह लेते हैं और कभी सहस्रों प्रसन्नताएं भी मन को आनंदित नहीं कर पाती हैं। और इस इबारत को हमने पढ़ने के बाद बहुत सारे संदेश जो हमारे श्रोताओं ने पहले से भेजे हैं, उन संदेशों में से कुछ संदेश हम आपके साथ साझा करते हैं। अब उन संदेशों में से एक संदेश, जैसे हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता लिख रहे हैं कि जो जीवन दर्शन की विभिन्न झांकियां हैं ना, वह प्रदर्शित करती अंकीय विश्लेषण पूर्ण अलंकृत गद्यांश है। अनेकों के बीच फलता फूलता एकाकी जीवन कालांतर में पुनः संख्या गरिष्ठ परिवार में परिणत हो सहस्त्रादि दुखों सुखों में भवर को पार करते हुए अतिक्रम करता है, अंततः पुनः एकाकी महाप्रयाण कर जीवन के सफर को अंजाम देता है। जीवन सफर को संगीतमय सफर का आह्वान करती कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संख्याएं अंक 1, 2 शब्दों आ आ ई ई उ उ आदि के पूर्वज हैं। शब्द तो अंकों के बहुत बाद में आए और आते ही चले जा रहे हैं, जबकि संख्याएं सबके सब आ चुकी हैं। क्या कोई नई संख्या बता सकता है? देखिए, अंक से कैसे बना है एक शब्द, एक से बना एका। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और एक दूसरे के बिना इस दुनिया की शुरुआत भी नहीं हो सकती। कितनी बढ़िया बात ये हमारे साथ कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कही हमारे श्रोताओं ने, तो हम आपको ये सारी बातें भी सुनाएंगे, लेकिन सुनाते हैं ये गीत। और इस गीत के पहले हमारा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, और वो प्रश्न ये है कि जीवन में अगर अंक ना हो तो क्या होगा। जरा विचार कीजिए कि अंक गायब कर दिए जाएं तो हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, जरा सोचिए, बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने इस बात का उत्तर पहले ही दे दिया है, पर बाकी श्रोताओं को तो भी उत्तर देना बनता है। तो बताइए, अगर जीवन में अंक नहीं है तो जीवन कैसा होगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में यह गीत, जिसे हमने लिया फिल्म धर्म करम से, और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देववर्मन का है संगीत। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि ये बताइए कि अगर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अगर अंक नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे एक श्रोता ने पहले ही हमें उत्तर दिया है, जिसे हमने सुरक्षित कर लिया और आप सबके साथ उसे हम साझा करने वाले हैं। पर कुछ बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं की आई हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अंक नहीं होंगे तो हम समय, तारीख, उम्र, रुपयों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बगैर अंक के मैसेज भेज पाना और पाना और भेजना असंभव होगा, और संचार व्यवस्था नहीं चलेगी, और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की ओर से सुरीला सफर भी ठप हो जाएगा। नहीं, हम इसको कुछ और तरीके से कर लेंगे ना, लेकिन पता तो पिन कोड पर ही आता है ना, तो नंबर तो चाहिए, अंक तो चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंकहीन जीवन शून्य होता है, गणित में भी शून्य की जिससे गुना किया जाए, फलसफा फलफलाफल शून्य ही होता है, शून्यता की पूर्ति संख्या ही करती है, और बस जोड़ घटाव करते रहते हैं, त्वरित फल के लालच में गुड़ा मत करें। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता कहते हैं कि अंक वह कल्पना ही नहीं कर सकते अंक के बिना। अंक है तो नदी की लंबाई, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सागर की विशालता, फूलों की रचना, पत्तों की सजावट, हाथ की उंगलियों की, सभी तरफ अंक बैठे हैं। बिना अंक के सही बात है, दुनिया तितर बितर हो जाएगी। हमारे श्रोता कहते हैं कि हार जीत का निर्णय भी नहीं कर सकते। सही बात है, भगवान शिव ने तो द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारित किया है, और वह कहते हैं कि चंद्रमा की गति विधि भी अंक पर आधारित है। जी बिल्कुल, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जीवन में अंक नहीं तो जीवन शून्य हो जाएगा, और ज्योतिष विधा अपना अस्तित्व खो देगी। आप भी सही हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंक नहीं होंगे तो बिना अंकों के, रंगों के बिना, जैसे चित्रकारी, संगीत के बिना किसी एक धुन की तरह होगा। अंक केवल गणित का हिस्सा नहीं।

0: ये वह हमारे जीवन, अस्तित्व, समय, भावनाओं सबके हिस्सा हैं। घड़ी की सुइयां, कैलेंडर, तारीखें सब अर्थहीन हो जाएंगी। हम सभी अपनी आयु का हिसाब नहीं रख पाएंगे, ना किसी खास पल का जश्न मना पाएंगे। बिना अंकों के पते, बैंक खाते, पहचान पत्र सब गायब हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्था बिखर जाएगी। प्यार, दूरी, भावनाओं को माप नहीं पाएंगे। अंक एक दूसरे को जोड़ते हैं, लय देते हैं। बिना उनके बिना दुनिया केवल एक अराजक और दिशाहीन कोहरा बनकर रह जाएगी। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता ने बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने लिखा है, अंक ना होते तो हमें मैथ्स से छुट्टी मिल जाती, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, गणित से छुट्टी पाने के लिए अंकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। पर फिर भी वह बहुत अच्छा लिख रही हैं। वैसे तो अंकों का आइडिया मानव मन में प्राचीन काल से ही होगा, बस उसकी प्रणाली आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने बनाया है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता, उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। कितनी अच्छी बात है। और प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, कहती है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन पोस्ट बड़ा हो जाएगा। जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज का सुरीला सफर अंकों से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो अंक गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। इसकी शुरुआत प्राचीन काल मेसोपोटामिया, सुमेरियन मिश्र और भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले व्यापार और निर्माण की जरूरत करने के लिए पूरी की गई थी। इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया। ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय नियमों को लिपिबद्ध किया। चलिए, आपने बहुत सही बात कही है। और उसके साथ अंक नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब जो जुड़ रहे हैं जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा। दशमलव शून्य हमने दिया है तो चांद पर नहीं जा पाएंगे, ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही हैं कि अंक नहीं होंगे, तो एक बड़ी सी इबारत भी लिखी है, लेकिन उस इबारत में से हम वही छोटी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि संतुलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्मांड नहीं चलेगा, अंकहीन होगा तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अक्षर हमें बोलना सिखाते हैं, अंक हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और अंक ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई, और इन सभी बातों के बाद में हम आप तक गीत पहुंचाना चाहते हैं, जो अगला गीत है। एक बात मन में आती है कि किसी श्रोता ने लिखा कि अंकों की गिनती 3000 वर्षों पहले हुई, पर उसके पहले भी भारत में सभ्यता थी, वो सभ्यता बिना अंकों के कैसे होती, जरा विचार कीजिएगा। सभ्यता बहुत पुरानी है, जब विश्व कुछ नहीं जानता था तब भारत में महाभारत हो रही थी, और उसके पहले भी हमारी सभ्यताएं हुई हैं, तो अंक जाने कब से हैं और जाने कब तक रहेंगे। और हमने कहा था, हमारे एक श्रोता ने पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उनका उत्तर ऐसा है कि आज के कार्यक्रम में बातें अंकों में होंगी, और मुझे लगता है अधिकांश गाने भी अंकों में ही बजेंगे। जीवन से यदि अंक निकाल दिए जाए तो उम्र का आकलन नहीं होगा, न समय की गणना होगी, न रूपये पैसों की गिनती होगी, न दूरियों का अंदाजा लगा पाएंगे। बिना अंकों के आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाएगी। आज मोबाइल, कंप्यूटर, एटीएम, सारी मशीनें अंकों पर आधारित हैं। आज का जो विकास है उस पर सर्वाधिक योगदान अंकों का है। फिल्मी गीतों में भी अंकों के पर आधारित बहुत गीत बने हैं, और उन्होंने कुछ गीतों का नाम लिखा है। ये गीत आपके और आपके देश के नाम, बस बता दीजिए इस गीत में अभिनेता कौन है, अभिनेता का नाम बताइए, और सुनिए ये गीत और विचार कीजिए अंकों के ऊपर। अगला प्रश्न आपके लिए यह देकर जा रही हूं कि आपके जीवन में कौन सा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एक अंक होता है, उसे कहीं भी लिखा हुआ देखकर, या घड़ी में देखकर, या चलते फिरते किसी गाड़ी में देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये मेरा अंक है, ये मेरे पिता का जन्मदिन भी हो सकता है, ये मेरी बहन का कोई दिन हो सकता है, ये मेरा अपना कोई दिन हो सकता है, मेरे अपने का कोई दिन हो सकता है। जरा विचार कीजिए, वो कौन सा अंक है जो आपके जीवन में बड़ा प्यारा है, आपको बड़ा प्यारा है, बताइए वो अंक, साझा कीजिए हमारे साथ, और बताइए इस गीत के अभिनेता कौन है।
1: Yep, Z.

हम सुन रहे थे ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा गीत। और हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही उत्तर दिया, मनोज कुमार जी। उन्हें हम प्रेम से भारत भी कहने लगे थे शायद, है ना। और हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा नंबर या अंक कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता जो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग अपने अपने अंक बताए हैं। मैं सभी के अंक पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, परंतु आपका जो अंक है जो आपको बहुत बार दिख रहा है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिख रहा है कि शायद उससे आपको कई बार प्यार मिल रहा हो, है ना। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी को दो अंक अच्छा लगता है, दो के बिना संसार अधूरा है, सही बात है। दस अंक किसी को अच्छा लगता है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर चलता है, जीरो एंड वन। और सोचिए कि कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या को या आपके नाम को या किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी इमारत को भी और बड़ी से बड़ी इमारत को भी, सब कुछ को वन एंड जीरो में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर किया जाता है। ये बड़ी कहानी है, पर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है उनको, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं। इस बात का जिक्र इन्होंने यहां पर किया है। हमारे कौश होता लिखते हैं कि उन्हें सात नंबर अच्छा लगता है क्योंकि सात का अद्भुत महत्व है, सात दिन है, सात स्वर हैं, इंद्रधनुष के सात रंग हैं, सात महाद्वीप हैं, सात समुद्र हैं, सप्तर्षि सात हैं और विवाह के फेरे भी साथ होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, समय के साथ उसका पतन भी हुआ। अगर पतन नहीं होता तो शून्य से ही प्रारंभ करना नहीं पड़ता। जी, पतन तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बदलाव जरूर हुए, उस बात को हम मानते हैं। और अब हमारे श्रोता ने उत्तर, कई सारे उत्तर दिए हैं। किसी ने कहा कि नौ उन्हें पसंद है क्योंकि वो पूर्णता का नंबर है, कोई कहता है कि उन्हें सात नंबर पसंद है, किसी को आठ पसंद है, किसी को तीन पसंद है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये वो कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई शिव जी के बारे में कि उनके साथ होता है। कोई कहता है कि शून्य उन्हें बड़ा पसंद है क्योंकि किसी भी अंक के आगे कितने भी शून्य लगा दो वो उसको बड़ा करता ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई पंगा लेने के लिए आता है तो शून्य से गुणा कर दो तो शून्य हो जाता है। और किसी को छह पसंद है, किसी को कोई अंक पांच पच्चीस तीस उन्तीस, कई सारे अंक पसंद है, किसी को बारह इक्कीस पसंद है, किसी को एक अंक पसंद है, सबको अलग अलग पसंद। कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है, लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देते। कोई कहता है कि तेरह अंक लोग गलत मानते हैं और तेरह बहुत अच्छा अंक होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में तेरह अंक को गलत माना ही नहीं गया। शायद किसी को अठारह नंबर पसंद है और किसी को कोई और अंक पसंद है, सबके अलग अलग अंक पसंद है। और मैं सभी के अंकों का स्वागत करती हूं क्योंकि हर अंक अति विशिष्ट है। अब मैं चल रही हूं अगले प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन, ये तो हो गई अंग्रेजी संख्याएं। भारत की संख्याओं में आपको कहां तक की संख्या पता है? भारत की संख्याओं में करोड़ के बाद 100 करोड़ नहीं होता, कुछ और होता है, है ना। 10 लाख तो 10 लाख ही रहते हैं, वो मिलियन नहीं होते क्योंकि उसके बाद 11 लाख हो जाते हैं, है ना। तो आप बताइए, आपको भारत की सभ्यता की संख्याओं में कहां तक की संख्याएं पता है? जल्दी से हमारे साथ साझा कीजिए। और ये भी बता दीजिए कि अगले गीत के ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, यानी गायक जो है वो कौन से हैं, बताइएगा।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया। आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोनी कोमी इसके संगीतकार, तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज्यादा हो सकती हैं, कहाँ तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं? तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आंख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, नील, दस नील, पद्म, दस पद्म, शंख, महाशंख, और इसके बाद ये रुक जाते हैं। तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं, और सागरोपम आयु की बात भी आती है, सागर, छह सागर, दस सागर, पंद्रह सागर, तैतीस सागर, ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे तो खरब तक पता है, एक खरब, सौ अरब, उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं, और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है, खत्म

नहीं होती, ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं अक्षौणी भी एक संख्या है। महाभारत के युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे। और भी है जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अरब खरब नील पद्म शंख और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चुटैया। जी ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं आज संडे की छुट्टी है, बेटी भी घर पर है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है, बैंक ऑफिसर है, तो वो लिख रही है रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है और हंसते हुए कह रही है कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे तो मेरी जॉब का क्या होगा। ये भी बड़ी चिंता है, चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पता, करोड़ तक तो पता है, उसके बाद खरब का भी पता है, शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं, एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना कि आज जब हम ये सुन रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को जरा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहां तक जाते हैं और कैसे बनते हैं। क्योंकि हमारे घरों में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था, फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान। कई सारी चीजों की बात आती थी तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे, क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो, अंकों से ही बना हो, ग्रंथ हो, किताब हो, कोई भी चीज हो। आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के, वर्ग पहेली भी एक आती है समाचार पत्र में, उसमें भी अंकों की आते हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है ये एक पहेली है, इस पहेली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म से यह गीत आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज बहुत पसंद है, पूरी वादियां गूंजती हैं इस आवाज में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है और एक ग्रंथ है आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है। बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना इसमें खगोल शास्त्र गणित काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड के माप का विस्तृत वर्णन भी है। इसके साथ न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों पर ही आधारित होती है जी, हम इसे मान सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से जिक्र किया है लीलावती ग्रंथ का, फिर से बात आई है और इन्हीं सभी ग्रंथों की बात फिर से आई है और इस बात के लिए बहुत अलग अलग परंपराओं की बातें कही हैं और उन ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि सुंदरी विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी ऐसा कहा जाता है। दशकुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूं मगर आज बच्चों को 1, 2, 3 तो आते हैं पर हिंदी के अंक 1, 2, 3, 4 न पढ़ने में आते हैं न लिखने में आते हैं। बहुत विचारणीय बात आपने कही है और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इस बारे में बहुत सारे बातों को बताया है और एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। भी थोड़े दिन पहले ये जानकारी मुझे भी कहीं से मिली थी, क्योंकि एक श्री भूवलय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनने में पढ़ने में आई है कि ये जो ग्रंथ है यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं जैसे तात्विक विचार है, वैद्यक अणु विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवद गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं और पहला कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था और इसमें 6 लाख पद्य हैं और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियां आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूं, हम सब इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हैं, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हैं। इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले जमाने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कोड़ी का दंड करते थे, तो हमारे यहां कहावत ये हो गई कि आदमी कोड़ी का भी नहीं है जी। 5 सिद्धांत का गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है जी। बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ पहुंचाते हैं और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। तो

लोगों से दोस्ती कीजिए और सुनते हैं हम अगला गाना, पांच रुपया बारह आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत।

तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देववर्मन का संगीत और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़ी मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना पांच पैसे का एक सिक्का और एक पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, छह पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तिहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए, अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही, मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वो संभा कितने आदमी थे सरदार, दो देखा, गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूं क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं और तो एक दर्द देना तो बनता है और वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है, वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अगला गीत है, इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

किसी का इंतजार, वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

हम सुन रहे थे तेजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन है। गीतकार हैं जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने दो, दस तोला, बोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारी श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर में बस इतना ही। गणित के साथ पले बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

0: Good afternoon. This is Akashwani, and I'm Sunil Verma with the Midday News. The headlines. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The External Affairs Ministry said the targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end, and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region, in keeping with international law, must be restored at the earliest. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. U.S. Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone, and communications facilities. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates. Qatar and Kuwait said they intercepted the incoming projectiles, while Bahrain also activated missile alerts. Iran also claimed to have carried out strikes on a U.S. military base in Jordan. Iran's Revolutionary Guard said it has closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if U.S. strikes continue. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding several agreements during a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, a report by our correspondent.
1: In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress. The two nations exchanged MOUs and agreements in the fields of defense, critical and rare earth minerals, agriculture, maritime security, and space. During his visit, Prime Minister Modi was conferred the highest civilian medal of honor, Bintang Adipurna, of the Republic of Indonesia. In the second leg of his tour, Prime Minister Modi traveled to Melbourne, Australia, where he participated in the third India-Australia annual summit with the Australian Prime Minister. The visit also enabled the supply of uranium from Australia to India. During the visit, Australian Super announced to invest $500 million to India's National Investment and Infrastructure Fund. On the final leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland. During the visit, Prime Ministers of India and New Zealand announced the creation of the India-New Zealand Strategic Partnership and set a target to double bilateral trade by 2030. With Dipendra Kumar, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
0: BJP has said that India has emerged as a stabilizing force in the Indian Ocean and Indo-Pacific region. Addressing a press conference in New Delhi, party spokesperson Sambit Patra said, Prime Minister Narendra Modi recently visited Seychelles and Indonesia to further strengthen these strategic ties. He said the free trade agreement between India and New Zealand is a significant achievement. Mr. Patra highlighted 10 important outcomes from his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. This concludes the Indian Ocean Indo-Pacific Strategic Alliance, Defence and Maritime Cooperation, Critical Mineral Cooperation, Energy Security, Economic and Investment Outcomes, Digital Public Infrastructure and Educational Partnership. Mr. Patra also highlighted that India and Australia have issued a joint declaration on defence and security cooperation.
2: At the profound contribution of our great nation of more than 1 million Australians who trace their roots proudly back to India, your generosity of spirit shines through in every way. Over generations, your commitment to Australian aspiration and your love of this country has made it better, stronger and more vibrant. Australians of all backgrounds have been enriched by you bringing your culture here and adding it to our multicultural character. We are a better nation because we have you in it. You are a living bridge between Australia and India.
0: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. He ruled Qatar for 18 years before voluntarily handing over power to his son in 2013, breaking with regional tradition. Under his leadership, Qatar emerged as a global energy powerhouse, launched the Al Jazeera News Network, expanded its international investments, and successfully hosted the 2022 FIFA World Cup. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the demise of Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that he was a visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity. The Prime Minister added that India remembers him as a true friend. Mr. Modi conveyed his condolences to the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and the entire royal family and people of Qatar. The Indian Embassy in Vietnam today informed that the mortal remains of the 15 Indian nationals who lost their lives in yesterday's boat capsize near Phu Quoc Island in Vietnam are being transported to Ho Chi Minh City, Vietnam. In a social media post, the embassy said that after the completion of necessary formalities there, the mortal remains will be transported to India at the earliest. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Home Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stones for a series of development projects of the Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Ahmedabad. On this occasion, he launched a massive tree plantation drive under the Ek Ped Makinam campaign, which saw the planting of over 1 crore 25 lakh saplings across his Lok Sabha constituency, Gandhinagar, today. Addressing the gathering, Mr. Shah highlighted a long-term environmental roadmap to increase the green cover of the constituency to 20% by the 2029 elections. We have a report from our correspondent.
3: The Home Minister stressed that planting indigenous species like banyan, peepal, jambu and arjun will help lower city's temperature by 5% and ensure a livable environment for future generations. The Minister also issued a strong call to action for universal adoption of solar rooftops, urging every household and residential society to contribute to environmental sustainability. As part of this environmental push, 101 new oxygen parks were inaugurated and a dedicated e-book mapping their details was also released. In a major boost to public transport, 333 new electric buses were inducted into AMTS and BRTS fleets, making the Ahmedabad BRTS the first in the country to operate 100% electric and zero pollution fleet. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
0: Union Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Mr. Chauhan said today the entire world is concerned about climate change and global warming. He noted that since 1880, rising ocean temperatures and melting glaciers have led to an increase in global sea levels by about 20 to 23 centimeters. He added that the Earth's average temperature has risen by nearly 1.5 degrees Celsius compared to 1900, which is a serious warning sign of climate change. The Employees Provident Fund organizations introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted provident fund to regularize their status. Labor and Employment Ministry said that the scheme will remain open for a period of 6 months. This scheme applies to establishments that have been operating a provident fund trust recognized under the Income Tax Act 1961. The ministry said eligible establishments shall submit a formal application through email to the concerned regional office. An exempted provident fund is an employer-managed PF scheme that handles its own provident fund contributions internally through a private trust rather than depositing them directly into the employee's provident fund organization. We have a report.
4: The EPFO's introduced Amnesty scheme provides a one-time opportunity for eligible establishments that have been operating recognized PF trusts to regularize their status retrospectively. It is intended to bring such trusts within a uniform statutory framework while ensuring compliance with the applicable legal provisions. For employees, the scheme is expected to provide a greater certainty regarding the legal status of their employer's provident fund trust. It also requires that member accounts should have received contributions and interest at par with or better than the statutory EPFO rates for the prescribed relief to apply. By regularizing exempted PF trusts, the scheme is also expected to make the administration of provident fund benefits more streamlined and legally compliant. With Devendra Kumar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
0: In tennis, two Wimbledon titles will be decided today as the men's singles and women's doubles finals are played. World number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Sinner booked his place in the title clash with a straight sets victory over Novak Djokovic, while Zverev entered his first Wimbledon final after defeating British wildcard Arthur Ferry. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. In the FIFA World Cup, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered the semi-final defeating Switzerland 3-1 this morning. In the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic, West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपुण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
5: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
7: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
8: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
5: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
5: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
9: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
10: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ट्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
5: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है।

0: करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, हामी उपस्थित भएका छौं नेपाली लोकगीत लिएर। लोकगीत सुनाउने क्रममा पहिलो गीत लिएका छौं हीरादेवी वैवाको आवाजमा रहेको यो गीत।

0: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो। आरती ठकुरीबाट सुन्नुहोस् समाचार। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इण्डोनेशिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डको छ दिवसीय सफल भ्रमणपछि नयाँ दिल्ली आइपुग्नु भएको छ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले आज अहमदाबादमा धेरै विकास परियोजनाहरूको लोकार्पण अनि शिलान्यास गर्नुभएको छ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनले आम माफी योजना 2026 शुरू गरेको छ। भारतले आज ओमान तट नजिक वाणिज्यिक जहाजमाथि भएको हमलाको कड़ा निन्दा गरेको छ र मौसम विभागले आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगालका तराई क्षेत्र अनि सिक्किममा भारी वर्षाको लागि अरेन्ज अलर्ट जारी गरेको छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इण्डोनेशिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डको छ दिवसीय सफल भ्रमणपछि नयाँ दिल्ली आइपुग्नु भएको छ। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपुण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले आज अहमदाबादमा 405 करोड़ रूपियाँको लागत रहेको नगर निगमका धेरै विकास परियोजनाहरूको लोकार्पण अनि शिलान्यास गर्नुभएको छ। यस अवसरमा श्री शाहले एक पेड़ माँ के नाम अभियान अन्तर्गत विशाल पौधारोपण अभियानको शुभारम्भ पनि गर्नुभयो। यस अभियान अन्तर्गत आज उहाँको लोकसभा क्षेत्र गान्धीनगरमा 1,25,00,000 भन्दा अधिक पौधा लगाइएको छ। समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्रीले 2029 को चुनावसम्म निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पौधा लगाउने गतिविधिलाई 20% बढ़ाउने दीर्घकालीन पर्यावरणीय रूपरेखाको उल्लेख गर्नुभयो।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमन्त्रीले भोलि 11 औं इन्टरपोल डिजिटल फोरेन्सिक विशेषज्ञ समूहको बैठकको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। उहाँले गान्धीनगरमा राष्ट्रिय फोरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालयमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय जाँचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धाको पनि उद्घाटन गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कतारका पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधनमा गहिरो शोक व्यक्त गर्नुभएको छ। सोशल मीडियामा एक पोस्टमा श्री मोदीले शेख हमद बिन खलिफा अल थानी दूरदर्शी नेता रहेको, जसले कतारलाई विकास अनि समृद्धिको नयाँ उचाइसम्म

0: पालि लोकगीत कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त हुँदछ। हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रूपये की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। टेनिस में आज विम्बलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आप्टे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आप्टे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है। अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है। बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवी दिन मैं स्टेज पे गया। ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई। हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रूपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का स्टेज पे आया। वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवें दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोसना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने एक साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, जो आनंद लोकनाट्य करके है, वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, कि माँ को साथ देना चाहिए। तो मेरी बड़ी बहन अनीता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने के, और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में। पहले ऐसे घर भीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी चौथी यत्ता हो गई है।
2: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना? आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
3: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे, वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का। तो मैंने बड़ा होके, मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा, मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
2: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
3: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहे, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होने की, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आईच काली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में

0: कुछ लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था और मैं खुद वो देखते रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
1: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगाड़ा के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा वो कैसा है?
0: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे है। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा रजवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो दौर बहुत अच्छा था।
1: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा, और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई, तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
0: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायर के पेट में से ही तमाशा निकला, तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था, तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाशा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए स्टेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
1: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
0: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणु कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
1: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
0: हाँ।
1: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है, और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, वो टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाशा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाशा देखते हैं।
1: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
0: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
1: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
0: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
1: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो

0: सकते हैं।
1: जब से ये पुकार हुई है 25 जानेवारी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाचे में जो लोग आते हैं और बहुत शांति से तमाचा सुन रहे हैं, मेरा तमाचा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिक्का बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियो निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जानेवारी के बाद।
0: रघुवीर जी, आपके इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाटों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
1: बहुत बेहतरीन रही है।
0: रघुवीर जी, तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
1: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंग पे पूरा बदन ढका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
0: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
1: नहीं नहीं, बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाचे वाले, उनको भी पूछा, ये अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है? तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाचा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाचा देख रहे हैं, इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
0: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
1: होता है।
0: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाचा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाचा भी बदल चुका है, पूरा तमाचा बदला हुआ है, तमाचे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, पैसा रोजगार तमाचे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है, मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते हैं और अपना नाम भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाचे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाचे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगता है।
0: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

0: मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती
1: और ये समय है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। बच्चों की मुस्कान हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और इसी खुशी को दुगना करने आए हैं आज हमारे साथ
2: रेडियो किड्स।
0: चलिए जानते हैं इन रेडियो किड्स के नाम।
3: मेरा नाम वंशिका है और मैं कक्षा छठी में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम दर्शिता है, मैं कक्षा थर्ड में हूँ।
5: मेरा नाम मोक्ष है, मैं कक्षा फोर्थ में हूँ।
1: आप सब कैसे हो?
6: हम सब ठीक है।
1: अब तो छुट्टियाँ खत्म हो गई और स्कूल भी खुल गए हैं। खुल गए हैं ना सबके स्कूल?
6: यस।
7: हाँ हाँ जी दीदी, हमारे स्कूल खुल चुके हैं
1: और अब तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। लेकिन सबके कुछ ना कुछ शौक होते हैं ना, तो चलो बताओ अपना एक एक शौक। एक एक क्या, बहुत सारे शौक बताओ।
7: मेरा शौक तो चित्र बनाना, डांस करना और गाने गाने में है।
1: दर्शिता तुम भी बताओ।
4: मेरे शौक ये है कि मुझे स्विमिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, पियानो बजाना पसंद है और हाइड एंड सीक खेलने में पसंद है।
1: और मोक्ष तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम भी बता दो।
5: मेरे को रनिंग करना पसंद है, हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है।
4: दीदी मुझे तो स्विमिंग में ड्राइव मारनी भी आती है।
0: अब आप सब बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक पूरे करना क्यों जरूरी है?
4: पढ़ाई के साथ शौक भी बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ाई करते करते बोर भी जाते हैं तो शौक भी तो बहुत जरूरी होते हैं।
7: दीदी।
0: हाँ वंशिका।
7: ज्यादा देर पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक दो घंटे बाहर जाके खेलना चाहिए। उससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और फिर हम और भी ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसा करने से हम जल्दी चीजें याद कर सकते हैं।
1: वंशिका ने तो बिल्कुल सही कहा। क्या लगता है मोक्ष, ऐसा करना चाहिए?
5: हाँ दीदी ऐसा करना चाहिए।
1: अच्छा, और खेलना और भी चीजों के लिए जरूरी है?
7: दीदी हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें खेलना जरूरी है।
1: हाँ जब खेलेंगे तो क्या होंगे, हम फिजिकली
4: स्ट्रांग हो जाएंगे।
1: अरे दक्षिता को तो बहुत कुछ पता है।
4: मैं एक पोयम बोलना चाहती हूँ।
0: हाँ दक्षिता सुनाओ।
4: हे जगपालक हे भगवान, सबको दो सच्चा शुभ ज्ञान, हाथ जोड़ कर करे प्रणाम, करे तुम्हारा ही गुणगान, कभी किसी से झूठ न बोले, पहले सोचे फिर मुंह खोले, अपनी मीठी भाषा से हम कानों में भी रस घोले, दीन दुखी की मदद करे दिन, दो सबको ऐसा वरदान। थैंक यू।
1: अरे वाह दक्षिता, तुमने तो बहुत ही अच्छी सी कविता सुनाई। अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
7: बिल्कुल।
1: अच्छा बताओ फिर कौन सा सुनोगी।
4: लक

0: अच्छा, गीत कैसा लगा आप सबको?
1: बहुत ही अच्छा।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वंशिका बताओ, क्या पूछना चाहती हो तुम या क्या बताना चाहती हो तुम?
1: मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर अचानक से हमारे सामने वाला बड़ा सा आम का पेड़ बोलने लग जाए तो हम उनसे क्या बातें करेंगे, और क्या तुम लोग भी उनसे बातें करना चाहते हो?
2: हाँ हाँ, बातें तो करेंगे, लेकिन क्या बातें करेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: अरे मोक्ष, कोई एकदम पेड़ बोलने लग जाएगा, तुम डरोगे नहीं?
2: नहीं दीदी, मैं नहीं डरूंगा।
0: वाह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो।
2: अगर पेड़ बोलते और अगर हमें सुनते तो मैं उन्हें धन्यवाद देता, कहता शुक्रिया पेड़ भाई, जो तुम हमें साफ हवा और छाया देते हो और फल देते हो और हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते, माफी मांगता सॉरी, हम इंसानों ने तुम्हें काट कर घर बनाए, फैक्ट्री लगाई, अब हम गलती सुधारेंगे, हाल चाल पूछता, गर्मी में पानी मिल रहा है, कोई तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, वादा करता आज से मैं हर साल कम से कम 2 पेड़ लगाऊंगा और दूसरों से भी लगवाऊंगा, उनकी कहानी सुनता, तुमने कितने मौसम देखे, कितने बच्चों को झूला झुलाया, बताओ ना पेड़ दादा।
0: मोक्ष, आप तो बहुत अच्छी बातें करोगे पेड़ के साथ। वंशिका तुम भी बताओ।
1: अगर हम पेड़ अचानक बातें करने लगा और हम उसके पास गए तो वो तो रो रहा ही होगा, क्योंकि इंसानों ने इतने पेड़ काटे हैं, उनको इतना दर्द दिया है, तो वो रोने लग जाते तो फिर वो हमसे बोलते, ओ बच्चों तुम तो पेड़ लगाते हो पर कुछ मुझे काट देते हैं, मैं तो उनको बोलती कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती पर मैं और मेरे 2 दोस्त मिलकर हर साल बहुत सारे पेड़ लगाएंगे।
0: वंशिका आपने तो बहुत अच्छी बातें बोली, तो हम अपने बर्थडे पर एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं, है ना? और पेड़ हमारी कितनी हेल्प करते हैं। अच्छा बताओ तो, पेड़ और वन हमें क्या क्या देते हैं?
2: पेड़ हमें ऑक्सीजन देते

0: है, फल देते हैं और छाया देते हैं धूप से बचाने के लिए।
1: और इतनी गर्मी में पेड़ की छाया कितनी अच्छी लगती है ना।
0: हाँ, हमें बहुत ज्यादा ठंडी हवा मिलती है।
2: दक्षिता, आप क्यों चुप हो, आप भी बताओ कुछ।
3: अगर मुझे पेड़ मिलेगा तो मैं उस पेड़ को बोलूंगी, शुक्रिया पेड़ कि तुम हमें इतनी अच्छी हवा देते हो, इतनी अच्छी छाया देते हो, हमें फल सब्जियां देते हो और हमें ऑक्सीजन देते हो। थैंक यू पेड़ हमें उन सारी चीजों के लिए।
2: दक्षिता, आप एक कविता लाए हो ना।
3: हाँ,
2: सुना दो फिर।
3: मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है।
1: बहुत अच्छी कविता थी दक्षिता तुम्हारी।
0: मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ दीदी। पेड़ हमारे साथी है, पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
2: अच्छा, ये तो बताओ, आज हम वन और पेड़ों की बातें क्यों कर रहे हैं?
0: मैं बताऊं?
2: हाँ बताओ वंशिका।
0: 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव था। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वन महोत्सव का उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना, हरियाली बढ़ाना और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
1: बातें तो हमने बहुत सारी कर ली,
2: अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
0: हाँ, हमें बिल्कुल एक गाना सुनना है।

0: आप सबको गीत कैसा लगा?
1: बहुत ही अच्छा।
0: अच्छा बताओ, समर वेकेशन में आप सब कहाँ कहाँ गए थे?
1: मैं बताती हूँ, मैं अपने दादी नानी के घर घूमने गई थी। वहाँ मैंने अपनी दादी नानी से बहुत सारी बातें करी। मैंने अपनी दादी के साथ पेड़ लगाए थे।
0: वंशिका तो बहुत इंजॉय करके आई है अपनी समर वेकेशन में। दर्शिता तुम क्यों चुप बैठी हो, तुम भी बताओ तुम कहाँ गई थी?
2: मेरे पापा और मम्मा और मेरी दादी और दादू साथ में मेरे साथ वाटर पार्क गए।
0: मोक्ष, अपनी समर वेकेशन में कहाँ कहाँ गए थे?
3: मैं अपनी नानी के घर गया था।
0: और क्या सीखा आपने अपनी नानी से? नानी ने कहानियाँ तो सुनाई होंगी। सुनाई थी?
3: हाँ सुनाई थी।
0: तो बताओ, नानी और दादी की जो सीख होती है हमें क्या सिखाती है, पहले बताएगा मोक्ष।
3: सब्र रखना, नानी कहती है जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई भी काम आराम से सब्र से करो तो अच्छा होता है। इज्जत करना, बड़ों के पैर छूना, थैंक यू प्लीज बोलना, किसी को बीच में ना टोकना, ये सारी मैनर्स नानी से सीखते हैं। नानी हमें सिखाती है सुबह जल्दी उठो, ताजी ताजी हवा में सैर करो, पूरा दिन अच्छा जाता है, बॉडी में फुर्ती रहती है।
0: मोक्ष, आप तो अपनी नानी के घर से बहुत अच्छी बातें सीख कर आए हो। वंशिका, आप भी बताओ।
1: मेरी दादी और नानी ने मुझे कहानियाँ सुनाई, जैसे राजा रानी, परियों और पंचतंत्र की कहानियों से हमें समझदारी और संस्कार मिलते हैं। उन्होंने एक चीज और सिखाई, रिश्तों को जोड़ के रखना, त्योहार पर सबको बुलाना, फोन करके हालचाल लेना, छोटे बड़े से प्यार से बात करना और सबका आदर करना।
0: अरे वाह वंशिका,

0: बात अर्षिता, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो।
1: सच में ये तो बहुत अच्छा गीत था।
0: चलो सुने एक और प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम पहचाने कौन। ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि प्रश्नों और गीतों के माध्यम से हम और आप रूबरू होते हैं। तो चलिए वक्त की कदर करते हुए सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गाना, जिसके लिए प्रश्न है कि इस गाने के पार्श्व गायक कौन है। प्रश्न पूर्ण दोहराती हूं, इस गाने के सिंगर कौन है। आपको अपना सही जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 में भेजना है, नाम और पता सहित। याद रहे दोस्तों, गीत खत्म होने से पहले सही जवाब देने वाले श्रोताओं का नाम ही कार्यक्रम में लिया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, और इस गाने के लिए प्रश्न है कि इस गाने के सिंगर कौन है।

खुशी दोस्तों, अभी आपने सुना ये गाना कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में। और इस गाने के लिए प्रश्न था कि यह गाना किस फिल्म का है। सही जवाब है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सही जवाब देने वाले श्रोताएं हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, अजीत भावसर, प्रमिला भावसर, वीर मगाम गुजरात से, सरिता कुमारी, राजकुमार, सुनीता रोंगफो से, भावना छेत्री और ताशिला रानीपुल से। आप सभी को ढेर सारी बधाई और ऐसे ही कार्यक्रम में भाग लेकर हमें सहयोग देते रहिए। तो चलिए कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बनाते हैं अगले गाने के साथ। और इस गीत के लिए प्रश्न है, इस गीत के संगीतकार कौन है? प्रश्न पुनः दोहराती हूँ, इस गाने के म्यूजिक कंपोजर कौन है? आपको अपना सही जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 में भेजना है, नाम और पता सही। तो आप इस गीत के को सुनते फटाफट जवाब दीजिए कि इस गाने के म्यूजिक कंपोजर कौन है।

दोस्तों, अभी आपने सुना ये गाना केसरी फिल्म से, और इस गाने के लिए प्रश्न था कि इस गाने को किसने लिखा है। सही जवाब है मनोज मुंतशिर। सही जवाब देने वाले श्रोता है बबलेश पनवार, डेनिम पनवार, मनीष पनवार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, अजीत भावसर, प्रमिला भावसर, वीर मगान गुजरात से, रेखा शाह बुरहनपुर बद्रली से। आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम पहुंच गए कार्यक्रम के अंत में। हम उन सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लेकर हमें प्रोत्साहित किया और बेहतर करने के लिए। ऐसे ही आप हर रविवार इस कार्यक्रम में भाग लेकर हमें सहयोग देते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगी। धन्यवाद।

0: La so song lo de tangyam chi nga chi den jong lo pe pangin men to lerim di naro ja gi ge na wa shu do yin nga chi lung te kha ga to gi chu zu khol lo the ji na tha to phi cham gi chu zu tu dung rap do ge tha se man na ke leng ge de zu gi a sim chi gyab le gel sa de li le yu ti hindi ke na sha ne chi se mon no shin nga lerim di le gom shu do yin tu ji chi
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे

0: न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव को दिशा 13.67 मीटर तदनुसार 1,404 किलोहर्ट्ज को तरंगमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम कानूनी कुरा, जसमा आजको विषय छ सिक्किम एन्टी ड्रग एक्ट।
3: नमस्कार श्रोता, हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौं कानूनी कुरा कार्यक्रममा साडा एक्ट 2017 विषयमाथि महत्वपूर्ण जानकारी र उक्त विषयमाथि जानकारी दिन भनी यस क्षण हाम्रो आकाशवाणी गान्तोकको स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिसेस अथोरिटीकी प्यानल एडभोकेट सुश्री कमला गिरी।

भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियों का पाया जाना हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सरलतम रूप में जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जो एक विशेष भूभाग पर रहते हैं, सामान्य बोली बोलते हैं तथा जिनमें सांस्कृतिक समानता, निरंतर संपर्क तथा कुछ विशेष हितों के कारण सामुदायिक एकता की भावना होती है।

प्राचीन काल में उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में बांग्लादेश के तितिदिया तक, पूर्व में भूटान तिब्बत की सीमाओं के संगम बिंदु पर स्थित गिप्पोची सिक्किम से लेकर नेपाल के अरुण नदी तक लेपचाओं का साम्राज्य फैला हुआ था। ये फैला हुआ स्थान ही मयेनलांग के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है छिपा हुआ आनंदमय स्थान। इस मयेनलांग में जब तक तिब्बत के खेमबुमसा का प्रवेश नहीं हुआ था, तब तक यहाँ के लेपचाओं के अपने राजा तथा विशिष्ट पुजारी पुजारिन हुआ करते थे। तिब्बत का राजा खेमबुमसा को कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने मयेनलांग में निवास करने वाले पुजारी थीकुंग तेक और निकुंग नयल के दैवीय शक्ति के बारे में सुन रखा था। पुत्र वरदान पाने की दृष्टि से खेमबुमसा ने सिक्किम के उत्तर जिला काबी नामक स्थान पर पुजारी पुजारिन के दर्शन किए। थीकुंग तेक और निकुंग नयल ने खेमबुमसा को एक नहीं बल्कि तीन पुत्र होने का वरदान दिया। सन 1235 में खेमबुमसा और थीकुंग तेक निकुंग नयल के बीच काबी लोंगचोक नामक स्थान पर संधि हुई थी। इस स्थान पर खून छिड़ककर तिब्बती और लेपचाओं के मध्य रखी गई मित्रता और आने वाले समय में लेपचा और भुटिया आपस में भाई भाई की तरह रहने की शर्तें रखी गई थी। भोट का अर्थ होता है तिब्बत में रहने वाले। यहाँ के रहने वाले तिब्बतियों को भोटे कहते हैं। सन 1642 में तीन बुद्धिजीवी लामाओं ने हिमालय की पृष्ठभूमि में बसे योक्सम नामक स्थान पर सिक्किम के प्रथम छोग्याल फुनसोंग नामग्याल का राज्याभिषेक किया था। फुनसोंग नामग्याल के बाद 12 राजाओं ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और फिर यही सिक्किम 16 मई 1975 के दिन दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत की आत्मा के साथ एक हो गया। हालांकि भुटिया जनजाति ने अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है सिक्किम की भुटिया जनजाति की विवाह प्रथाएं।

0: विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा है। यह दो लोगों के दिल और आत्माओं को पवित्र बंधन में बांधता है तथा सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर एक जश्न मनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। अन्य धर्मों में विवाहों के विपरीत भुटिया जनजाति विवाह अनुबंध नहीं है बल्कि एक सामाजिक दायित्व है। इन जातियों में विवाह के रस्म रिवाज अलग अलग है, अपनी स्थानीय परंपराएं और रीति रिवाज हैं। विवाह करवाने का पहला रस्म है ठिछों यानी पूछताछ। इस रस्म में वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के माता पिता और मामा के पास जाकर वधु का हाथ मांगते हैं। भुटिया जनजाति में वर वधु दोनों पक्षों में मामा की भूमिका को मुख्य रूप से देखा जाता है। दोनों ही पक्षों में मामा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर के मामा और एक दो रिश्तेदार वधु के घर जाकर वधु के मामा माता पिता से वधु का हाथ मांगते हैं। साथ ही वर पक्ष से आए मामा अपने साथ कुछ सामग्री जैसे एक बोतल छंग, एक विशेष प्रकार का पेय, साथ ही एक रेशम का कपड़ा खदा अर्पण करते हैं। अपनी पगड़ी यानी टोपी उतारकर वधु का हाथ यह कहकर मांगते हैं, आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके पास इस उद्देश्य से आए हैं, मेरा भांजा जो मार्तम का निवासी है उसके लिए मैं आपकी घर की लक्ष्मी को अपने घर की लक्ष्मी बनाने आया हूँ। यहाँ पर वधु पक्ष के मामा तुरंत राजी नहीं होते हैं, वे दो तीन दिन का समय लेते हैं। इसके बाद वर पक्ष से आए मामा और दो रिश्तेदारों को खदा अर्पण कर उनको विदा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भुटिया जनजाति में विवाह अपेक्षाकृत अधिक उम्र में किए जाते हैं। कन्या की विवाह की उम्र 21 से 25 और वर की उम्र 30 से 32 वर्ष की होती है।
1: आइए अब हम एक गीत सुनते हैं जिसमें भुटिया जनजाति का एक नौजवान एक नवयुवती से अपनी भावनाओं को उजागर कर रहा है।

विवाह करवाने का दूसरा रस्म है खाचों। खाचंग रस्म में वर पक्ष के लोग कुछ सामग्री और धनराशि वधु पक्ष को देते हैं। वधु पक्ष के माता पिता, मामा, चाचा चाची साथ बैठकर यह भी निर्णय लेते हैं कि विवाह के लिए वे राजी है या नहीं। बाद में वर वधु दोनों के गोत्र मिलने के बाद वधु पक्ष के लोग विवाह के लिए राजी होते हैं। अब वर पक्ष से आए हुए मेहमानों को वधु पक्ष के माता पिता खादा अर्पण कर उनका स्वागत करते हैं, साथ ही बैठने को कहते हैं। वर पक्ष से आए हुए लोग वधु पक्ष के परिवारों को 3 किलो चाय पत्ती, चूड़ा, छंग, एक प्रकार का पेय, साथ में 5001 रूपए और खदा चढ़ाते हैं। वर पक्ष से आए हुए मेहमानों को मक्खन वाली चाय के साथ जीरो खाबजे, एक प्रकार का व्यंजन खिलाते हैं। खाचो रस्म के बाद आता है नांगछौ। वधु के घर वाले समय देखकर वर पक्ष को समाचार भेजते हैं कि इस तिथि को वधु के घर आना है।

वर पक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ वधू के घर आते हैं। इस रस्म में वर पक्ष के लोगों को कुछ परीक्षाएं देनी होती है, क्योंकि आप वधू को अपने घर आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा इस प्रकार से ली जाती है, जैसे लकड़ी की काठी अथवा घोड़ा के ऊपर वर को बिठाया जाता है। इसके द्वारा यह देखा जाता है कि लड़के का शारीरिक रूप ठीक है या नहीं। लोक कथा के अनुसार पहले लोगों को कीमती रत्न दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए समुद्र पार जाना पड़ता था, क्योंकि रत्न यानी दिव्य शक्ति आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता था। बहुत कोशिशों के बाद ही रत्न प्राप्त होता था। इसी प्रकार इस जनजाति में भी वधू को प्राप्त करने के लिए ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ती है। वधू की तुलना समुद्र रत्न से की जाती है। जब वर पक्ष के लोग इस परीक्षा में खड़े नहीं उतरते, तब वर पक्ष के लोग वधू पक्ष की महिलाएं जो ये परीक्षा लेती हैं, उन्हें उपहार स्वरूप धनराशि और खदा देते हैं। परीक्षा देने के बाद वर पक्ष वधू पक्ष की ओर चार प्रकार की सामग्री, जिसमें मुर्गे का गोश्त, चावल, छंग और 3 किलो चाय पत्ती आदि देते हैं। वधू पक्ष के लोग वर पक्ष से आए रिश्तेदारों को एक पर्ची थमाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि खास रिश्तेदारों को उपहार स्वरूप क्या देना है। वर पक्ष उस पर्ची को देखकर उसके अनुसार उपहार तैयार करते हैं कि उन्हें वधू पक्ष को क्या देना है। वैसे वधू की माता को अलग से उपहार भेंट करनी होती है। भुटिया जनजाति में दहेज देने की प्रथा न के बराबर है। विवाह के दिन वधू पारंपरिक लहंगा, एक प्रकार की पोशाक जिसे बखू कहा जाता है, धारण करती है। बखू को होंजो के साथ पहनती है, जो पूर्ण आस्तीन का ब्लाउज है। रेशम के बेल्ट यानी पंगदिन को कमर से बांधती है, साथ ही गले में सोने की ट्रिकेट खाऊ गहने पहनती है। वर बखू को ढीले पतलून के साथ पहनता है। भुटिया जनजाति ईश्वर में बहुत आस्था रखती है, जिसकी पूजा कई देवी देवताओं के रूप में की जाती है। विवाह के दिन बड़े लामा यानी पुजारी स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात लामा वर और वधू को पूजा कक्ष के अंदर बिठाकर उन दोनों से पूजा करवाते हैं।

बड़े लामा और अन्य लामा जो कि पूजा कक्ष में बैठे होते हैं, उन्हें मक्खन वाली चाय के साथ जीरो खब्जे चूरा परोसा जाता है। साथ ही वर वधु दोनों को भी मक्खन वाली चाय और व्यंजन दिए जाते हैं। चाय पीने के बाद बड़े लामा दुल्हा दुल्हन दोनों को ही आशीर्वाद देते हैं। वर पक्ष विवाह के दिन वधु पक्ष के लोगों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। उपहार वस्त्र भूषण आदि के रूप में दिया जाता है। इसके बाद संगीत और नृत्य का कार्यक्रम होता है।

जिस घर में विवाह का अनुष्ठान होता है उसे साफ कर रंग बिरंगे रेशमी कपड़े खादा से सजाया जाता है। इस दिन घर के एक कोने में रसोई का आयोजन करते हैं, विशेष रूप से विभिन्न व्यंजनों को तैयार करते हैं। वर या वधु के माता पिता, रिश्तेदार आदि नए कपड़े और आभूषण धारण कर मेहमानों से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भुटिया जनजाति शादी के इंतजामों पर काफी पैसा खर्च करते हैं। एक बड़ा तंबू खड़ा किया जाता है। इस तंबू में मेहमानों के लिए बैठने और खाने की व्यवस्था की जाती है। खाने के बाद सभी मेहमान और रिश्तेदार वर और वधु दोनों को आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्ग आशीर्वाद वर वधु को इस प्रकार से देते हैं, तुम नए घर में प्रवेश करने जा रही हो, जिस घर में तुम जा रही हो उस घर का वंश आगे बढ़ाओ, सूरज की किरण जैसी चमको, सभी लोग तुम्हें खुश रखे। अंत में वह क्षण आता है जब वधु अपना घर छोड़ देती है और अपने ससुराल चली जाती है। जब दुल्हन दूल्हे के घर आती है तो वहाँ दुल्हन को सबसे पहले रसोई में जाकर एक दो रस्म निभानी पड़ती है, जैसे चूल्हे में लकड़ी डालना, चूल्हे पर दूध बिठाना, मक्खन निकालना आदि। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। फिर पूजा कक्ष में जाकर दूल्हा और दुल्हन मत्था टेककर प्रार्थना करते हैं। वर पक्ष के सभी रिश्तेदार और माता पिता, मामा संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। यह कार्यक्रम रात भर चलता है।

सिक्किम की भुटिया जनजाति की विवाह प्रथा में जब वधु वर के घर आती है तो सभी लोग रात भर नृत्य एवं संगीत का आनंद उठाते हैं। जिस तरह से आरंभ की हुई हर चीज का एक अंत होता है, उसी तरह भुटिया जनजाति के विवाह प्रथा भी टाशी गीत के द्वारा संपन्न होती है। आइए अब हम वो गीत सुनते हैं जिसके द्वारा सिक्किम की भुटिया जनजाति की विवाह प्रथा संपन्न होती है।

0: एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे सिक्किम की भुटिया जनजाति की विवाह प्रथाएं। आलेख केसंग डोमा भुटिया, वाचक स्वर केसंग डोमा भुटिया और मिताली दत्ता, प्रस्तुति आकाशवाणी गांगटोक केंद्र की।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत अन्तर्गत सिक्किमको भुटिया जनजातिको विवाह प्रथा र यसको प्रवक्त्री हुनुहुन्थ्यो केसाङ डोमा भुटिया। श्रोता, अबको समय हो यही केन्द्रबाट नेपालीमा राष्ट्रिय समाचारको।
7: यो आकाशवाणी हो, राष्ट्रिय समाचार रक्षा राईबाट सुन्नुहोस्। शुरूमा मुख्य समाचार। भारतले ओमानमा रहेको व्यावसायिक जहाजमा भएको आक्रमणको गर्यो निन्दा। प्रधानमन्त्रीद्वारा इण्डोनेशिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डसँग विभिन्न सम्झौता सम्पन्न। राष्ट्रपतिद्वारा पार्श्व गायिका एस जानकी अम्माको निधनमा शोक व्यक्त। अनि फिफा विश्वकपमा इंग्ल्याण्ड र अर्जेन्टिना सेमी फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। भारतले आज ओमानको तटमा रहेको व्यावसायिक जहाज GFS ग्यालेक्सीमा भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा जहाजमा रहेका 11 भारतीय नागरिक मध्ये 10 जनालाई अहिलेसम्म उद्धार गरिएको छ भने एक भारतीय नागरिक बेपत्ता भएको जानकारी गराएको छ। ओमानस्थित भारतीय दूतावासले परिस्थितिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको र चलिरहेको खोज तथा उद्धार अभियानमा ओमानी अधिकारीहरूसँग सक्रिय रूपमा समन्वय गरिरहेको

0: उहाँले राष्ट्रका समाज सुधारकहरूको महान विरासतलाई सम्मान गर्नु र कायम राख्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपतिले भेलालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा र सामुदायिक सेवाप्रति मन्नथु पद्मनाभनको आजीवन प्रतिबद्धतामाथि प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले मन्नथु पद्मनाभनको आदर्शले समावेशी र सामञ्जस्यपूर्ण समाज निर्माण गर्ने दिशामा राष्ट्रलाई प्रेरणा दिइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इण्डोनेशिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डको 6 दिने भ्रमणका क्रममा विभिन्न सम्झौता सम्पन्न गरी नयाँ दिल्ली फर्किनु भएको छ। हाम्रो संवाददाताबाट एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सम्बित पात्राले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलनको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै सेसेल्स र इण्डोनेशियाको भ्रमणले रणनीतिक सम्बन्धहरूलाई अझ बलियो बनाउने बताउनुभयो। उहाँले भारत र न्यूजील्याण्ड बीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भनेर भन्नुभयो। श्री पात्राले इण्डोनेशिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डको आफ्नो भ्रमणबाट 10 महत्वपूर्ण परिणामहरू प्रकाश पार्नुभयो, जसमा हिन्द महासागर, इण्डो पेसिफिक रणनीतिक गठबन्धन, रक्षा र समुद्री सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक र लगानी परिणामहरू, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र शैक्षिक साझेदारी समावेश छन्। यसका साथै श्री पात्राले भारत र अस्ट्रेलियाले रक्षा र सुरक्षा सहयोगमा संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेको कुरा पनि प्रकाश पार्नुभयो। सरकारले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा नक्कली तस्विरको खण्डन गरेको छ, जसमा इथानोल मिश्रित पेट्रोलले सवारी साधनको इन्धन ट्याङ्कीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने दावी गरिएको छ। प्रेस सूचना ब्यूरोको तथ्य जाँच इकाइले उक्त दावीलाई गलत भनेको छ। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले तेल मार्केटिङ कम्पनीहरूले आपूर्ति गर्ने E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरोद्वारा तोकिएको मापदण्ड अनुरूप रहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले इथेनोल र पेट्रोल पूर्ण रूपमा मिसाउन मिल्ने हुन्छन् र इन्धनले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्दा अलग हुँदैनन् वा तह बनाउँदैनन् भनेर बताएको छ। यसका साथै मन्त्रालयले भारतमा आपूर्ति गरिएको इथेनोल मिश्रित पेट्रोलले कड़ा गुणस्तर मापदण्डहरूको पालना गर्नुका साथै उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराउनु अघि कड़ा परीक्षण गरिएको जानकारी दिएको छ। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। भियतनामस्थित भारतीय दूतावासले हिजो भियतनामको फुकोक टापु नजिकै भएको डुंगा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 15 भारतीय नागरिकहरूको पार्थिव शरीर भियतनामको हो ची मिन शहरमा लगिएको जानकारी गराएको छ। दूतावासले त्यहाँ आवश्यक औपचारिकता पूरा गरेपछि पार्थिव शरीरलाई चाँडोभन्दा चाँडो भारत पठाइने बताएको छ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओले एमनेस्टी योजना 2026 प्रस्तुत गरेको छ, जसले छुटिएको भविष्य निधि सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो स्थिति नियमित गर्न एक पटकको अवसर प्रदान गर्दछ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यो योजना 6 महिनाको अवधिको लागि खुला रहने बताएको छ। यो योजना आयकर ऐन 1961 अन्तर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा लागू हुनेछ। मन्त्रालयले योग्य प्रतिष्ठानहरूले सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयमा ईमेल मार्फत औपचारिक आवेदन पेश गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट।
2: ईपीएफओ की एमएनएसटी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा।

0: remember once more.
1: For more information, call National AIDS Helpline toll-free number 1097.
2: श्रोता अब प्रस्तुत छ शास्त्रीय गायन उस्ताद विलायत हुसैन खानबाट।

0: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुन्नुभयो शास्त्रीय गायन उस्ताद विलायत हुसैन खानबाट। श्रोता अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाचार सन्ध्या अन्तर्गत क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता उत्पीड़न धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
3: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
4: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
5: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1.25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
6: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सिमी समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।